0: धेरै कल झनगे सुताई छ आ चोगी सिरी सिरी झनगे सुताई छ
1: मेरो मनर बडा मित्र नमै सामान उते भई
2: gede
1: pinter
2: kok guri